0: सूत्री अठानब्बे डबल जीरो तिरपन्न उनासी पचहत्तर र अठानब्बे चालिस अड़चालीस पचहत्तरी पच्चिस
1: किसानको दुध किसानकै फल छ।

की भारत सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इकोटेक्नोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नेपाल का साथ ही वित्तीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध सर्वदेश अनुसंधान

0: फिर हम विश्वास करो मौसम में धीरे पॉजिटिव और निकल पाता मौसम के पॉजिटिव का विषय सम्मान के पर पानी पड़ना प्रणाली को जोड़ कर बिना संभावना का लिंबिनी फोर्टिस प्रदान कपिल वस्तु बाकी जिला का पूर्वी भारत बाकी भूभाग में हल्का पानी पड़ोसी का संभावना हो अगर प्रभाव प्रदेश को अपने क्षेत्र में भी पड़ोसी में पूर्वानुमान के दौरान तरह को सत्र गति से बना तथा भीषण पानी बिना संभावना पर निरोलक मौसम भी प्राजुली बटाई उसे अखबार सोमवार किसानों पर सहज बिना उनका इबादत होना तीन दिन का मौसम का अवस्था हो किसानों पर अपना ही पड़ना सावधानी बढ़े मौसम बीच दिन अपराधी अति खबर भी था
1: जनाम आक्रमण को लेकर 21 विपद का घटना घटल

0: 在家里面。
1: मेरे सोधाई नशा रस्ते की खबर थारू गांव में जहर पहल बहलाल का थारू समुदाय का बसोबास लग थारू गांव में नशा रस्ते की खबर सख्या ना शुरू के बाद इस अंगा पर बिया को क्लिया नगर पालिका पांच बारह फुट गांव में जहर पहल बहल को थारू समुदाय का खान बसोबास लग की गांव में नशा आए पांच संघर्ष तंत्र सख्या ना शुरू के लगो वहां पांच गति से बारह फुट का पांच फुट टोल में हरेक संख्या सख्या ना जरूरी किरला का विचलित स्थान प्रभावित संख्या साढ़े सात बजे से रात दस एगार बजे समय टोल टोल कर दफरमा महिला तथा पुरुष भेला को खास सख्या नाश रचना कर संख्या का टोल को स्थानीय किन्ना थारू के अनुसार दैनिक चालीस से पचास जनसम महिला सख्या नाश में सहभागी होना करना महिला को परम्परागत कन्या चोरिया में सपर्क नाश में सहभागी होना कर्तव्य से शुक्रा मंडप जाखा नाश काम में सफाई नगर बाट पालकपुर में पवै समझना शांति हरियाली उपर्ग लेखक पास टोलमहल बाट एक टोल में दुई सय छैसठी घरधुरी का बसोबास पालकपुर गांव का मूल वर्ग रूपलाल चौधरी पवै बाट वहां के अनुसार पांच फुट टोल में आजकल संचार पूर्व से सख्या नाश नियमित रूप में संचालन बीतीर दिनभर का काम दिशा संजय का परम्परागत थारू वेशभूषा में सफल का महिला तथा पुरुष राजस्थान में सहभागी होना दल बाद उत्तम से नस्तीयनाश थारू समुदाय का मौलिक संस्कृति को परंपरा से ज्वारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधि परम्परा थारू बट दशा का समय में विशेष रूप में चैन सख्या नाश मनोरंजन संग समुदाय का सदस्य एक ठाव में भेला करेन वो उत्तम से नव पुस्ता में हस्तांतरण पेटी सांस्कृतिक परंपरा में निरंतरता देना काम समेत प्रतिरक स्थान रसुआ का पटेको सीमा अलग ब्यास गरी बैठा मसे संपर्क अभियान उलग पर्यटक देवरा गांवपालिका गरी भैरमपुर का सात परिवार फल डुंगिरी सामुदायिक वन में आर्थिक सेवा डाक्टर दुई मार्ग का सामुदायिक वन में पीड़ित परिवार प्रति दुर्वार तीन हजार रूपया का दौरे कुल इक्कीस हजार रूपया सहयोग हो सहयोग हस्तांतरण करती सामुदायिक वन में अध्यक्ष सरुराम थारू विपद का कारण समस्या में प्रगत परिवार में कुछ राहत पुरस् करना उद्देश्य सहयोग प्रगत परिवार राहत वितरण कार्यक्रम में समाजसेवी बम बहादुर रावल दयाराम वैद्य श्री प्रसाद थारू लगायत सामुदायिक वन में पदाधिकारी वर्ग सहभागिता रहता बर्खामा समेत जंगल सफारी खुल्ला गर्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका आगमन भइरहँदा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार तिरासी चौरासीका कुरा पाँच प्रतिशतसम्म निकुञ्जमा नौ सय सत्ताइसजना नेपाली चौसठीजना सात राष्ट्र हो अन्ठानब्बेजना और विदेशी पर्यटक फर्मर्करबाट निकुञ्जको संरक्षण अधिकृतको सूचना अधिकारी महेश नेपालीको अनुसार बर्खामा बर्खाका समयमा फेरि निकुञ्ज खुल्ला गर्न पर्से पर्यटक खुल्ला भ्रमण गर्न अवसर पहिलाबाट रोयल टाइगर कटेजका संचालक राम शाही पासवर्ड समय विदेशी पर्यटक हुकमसँग नेपाली पर्यटकका आगमनले पहिलोबाट उहाँका निकुञ्जका जैविक व्यवस्था जङ्गल सफारी जङ्गल भागको कर्णाली रिङ लगायतको गतिविधिका प्रचार प्रसार गरिसकेपछि पर्यटकका संख्या आधुन पढाइ सेक्टरबाट बक्का कैरा हठिया अजगरुवा चित्तल मृग सिन्धी लगायतका वन्यजन टोक्नोकन्तर सेक्न पर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका नयाँ पर्यटन र महत्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा परिचित बर्खाका समयमा यसको भारी सञ्चालन से निकुञ्जका पर्यटकीय गतिविधिहरूमा निरन्तरता देवता कुवा सत्र गति से कडा पानी पर्न कडा हल्ला क्रियाकलाप जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कोहलपुर शाखा कार्यालय चनैलबार सामाजिक सञ्चारमा फैलना फरमका सूचनाका पाँच अनि राखत आधिकारिक सूचना अनुसार विश्वास गरा मौसमविद हिरा भट्टराई अधिकारी मौसम हिरा भट्टराई अधिकारीबाट मौसम विद भट्टराईको अनुसार सोमबार शेखर पानी परिणाम प्रणाली कुच वर्ग विना सम्भावनामा लुम्बिनी प्रदेशका दाङ कपिलवस्तु बाँके जिल्लाका पूर्वी भागमा हल्का पानी पर्न सम्भावना रहेको वातावरण प्रभाव प्रदेश पूर्व क्षेत्रमा एकप्रसिद्धमा पूर्वानुमान देखिएला। तर महाश्रोता त्यसै बडा तथा कला पानी पर्न सम्भावना पर्ने गर्दा मौसम विद्युतलाई प्रतिबाट महापौरले पटवारसम्म पाकल धान काठ घरभित्र भित्रै किसान सहसिना चाहेका होइन। तीन दिनको मौसमको अवस्था हो किसान टुक्रा अपनाइ पर्न सावधानी बारे मौसम विधिर हटाइसेट सुने
0: सोमबार ठुलो प्रसारण जुन सूचना लागेको छ ती सूचनाको बारे सामान्यको लागि यहाँ उपस्थित रहेको भएको छु। सूचनामा पनि आए जस्तो चाहिँ कुनै प्रकारको समस्या गएको छैन विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश तर पनि हल्का पर्सा कार्यक्रमपछि मर्चा आउने समस्या रहेको छ विशेष गरी जाम कपिलवस्तु जिल्ला बाँकी जिल्लाको पूर्वी पूर्व अनि साथै रुकुम जिल्ला बाँकी जिल्लाहरूमा पनि हल्का दिने मध्य मर्चा गराउने समस्या रहेको छ। सोलो समस्या रहेको हुनाले चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाबाहरूले चाहिँ अब किसान कर्म गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ म सोसनले आधिकारिक सूचना लिएर मात्रै गर्नु अनुरोध गर्दछु। सोको लागि नेपाल मौसमीले विभागको नम्बर 11 फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ हाम्रो मौसम तपाईँ फोनमा पनि आधिकारिक दिन अनुरोध गर्दछु। मौसम जन्य जानकारी चाहिँ अब आजदेखि सोमबारको पूर्वानुमान अलिकति नमिल पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै पछिल्लो समयको आजदेखि सूचना पर्ने हुने भए पनि पछिल्लो समयमा पनि हजुरले जानकारी नियमित रूपमा जानकारी दिएर त्यो जानकारी अनुसार नै आजदेखि भइरहेको छ हाम्रो गर्दछौँ। सञ्चार माध्यममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएर नै अब पानी पर्ने ठुलो पानी पनि कसको नौदेखि बाह्रबजे जुन विगत वर्ष नौदेखि बाह्रबजे ठुलो वर्षा भएको छ त्यस्तो प्रकारले समाधान गरेको छैन तर पनि हल्का फाटाफुट्टा वर्षा चाहिँ हुन सक्ने समाधान चाहिन्छ। अनुदान मध्यमा गर्दै आफ्नो खेती कर्म किसानी कर्म अनुरोध गर्नुहुन्छ।
1: डेली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मण सिंहले नियुक्तिबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता महाभारत समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै डाक्टर सिंहदेल फेरि अस्पतालमा कार्यरत अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन पीटर महाचिनका आन्वी मेडिकल युनिभर्सिटीमा सेसन 2016 पूर्व छात्र व्यक्तिमा अर्थोपेडिक सर्जरी अध्ययन गर्नबाट स्थानीय स्थायी ठेकादार पर्यटक मतदान एकलक डाक्टर सिंहदेव हाल नेपालगञ्ज 10 त्रिकुटी नगरमा वैद्य ऐनबाट अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि डाक्टर सिंहदेव फेरि अस्पतालका समग्र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नको पहिलेबाट अस्पतालका सेवा प्रदान थप प्रभावकारी बनाइदिए उपलब्ध संसाधनका उचित व्यवस्थापन हो। अस्पतालका विकास र प्राथमिकतामा काम गर्न उहाँ ग्राहीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय समाचार पाए।

0: समझे सुजन गुरु तथा सीधा सूर्य गुरु सभा समझे केवल कर्म रहा गृह मंत्रालय से संबंधित सांसद हुआ मदन बहादुर परियार विश्व कुमारी सापरा और श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी फिर प्रस्तुत जवाब है गृह मंत्री गुरु जो सदन में पेश कर प्रभात विकास मंत्रालय से संबंधित सांसद होगा मदन कुमारी साहब मदन बहादुर परियार का मौखिक प्रश्न तथा सोमनाथ पटेल का लिखित प्रश्न का उत्तर है गृह मंत्री रमजान कवर से प्रश्न करना कचहरी का टेबल कई बार की प्रश्न का उत्तर अध्ययन का नाम पीजन जानकारी अध्यक्ष कराई प्रधानमंत्री वरेन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन 2083 निर्वाचन आयोगको मुस्लिम आयोगका आर्थिक वर्ष 2081 82 वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न र विधायी व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्ण बहादुर ढोका समितिका आर्थिक वर्ष 2082 83 वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न
1: राष्ट्रीय समाचार संघ हमार संदेश का समय भराइलागल बा हमार संदेश ऐतिहासिक परिणाम मुख्यमंत्री संदेश विद्यालय बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय पांचोड़ी नगर पालिका नौ ठुमरीमा अत्यधिक विद्या टुकड़ा रेडियो प्रभाव एफएम का अवलोकन कर बात व आज बैठक राष्ट्रीय सभा के पत्री मामले में एक मंत्रालय से संबंधित सांसद का मौखिक तथा लिखित प्रश्न का जवाब देना प्रसंग संवैधानिक निकाय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश कर अब हमार संदेश कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमार संदेश ने खैर बाकी तब समक लाख समाचार लक्ष्य प्रस्तुत सक्रिय सुनहरिया गौरी शंकर कैमरा मेश सुनहरिया बिंदु अमर कुमार के विधायक रेडियो प्रभाव सुनिए रही।

0: जी क्या नहीं भाई एक बात तो बढ़िया रहा वो बढ़िया तो काम कर दो अच्छा कर रहा कहा था मेरा पत्रपति का सफाई
1: किसी और मिशन के किसी अच्छे को आ जाए खबर क्रम से खबर में ताकत होते रहे था

आपूर्ति प्रणाली में सुरक्षा निकाय संलग्न कराने विषय में जानकारी दिया। इस बारे बीबीसी ने राखी जिज्ञासा में सचिव तामाङ ने लामो समय देखि खलबलिएको आपूर्ति प्रणाली लय में फर्काने उद्देश्य सुरक्षा निकाय इस

समाप्त। इससे जनता है गवर्नमेंट के पास न पड़ी लैंड यूज प्लानिंग न पड़ी लैंड यूज प्लानिंग न पड़ी कौन सी हमारे पहले को पता लगाया जाता है कौन सी हमारी गति रिवाइज गवर्नमेंट की चेंज गवर्नमेंट।